अरे बच्चे तो खुदे के हुए फिर रहा कुछ किचे में खेल में दारे जो मैंने शवा दिमाग के